0: चलो सही था, अक्सर प्रॉब्लम करो कि जहां मन ने कम थैंक यू सो वेरी मच। अर्जुन को बिल्कुल जिनार कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बताओ तो पहर मेडिकल कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर के मिलो जी पेमेंट कर सिटी के बताओ तो बैजगढ़ शॉपिंग सेंटर दिन अलावा वर्थ ऑफ सभी मोहम्मद कॉस्मेटिक्स मनियारी सेंटर के बदलते मिली जी मदीना प्लाजा के दरम नंबर दुकान दे और तीसरे सरवा आरजी रहन हटक लेस एंड कॉस्मेटिक सेंटर क्यों मिले हुई मौजूद यूफून फ्रेंचाइज तमाम हम मॉडर्न कश्मीरी बिक्राई सरा पखवा की मार्केट थी और दिन अलावा द्रबखेल जुमात सर जिको मार्केटों ने कपड़ों वाले रही एक जुमात तरफ से लास्ट मार्केट चिकुम दे आकी जमा दुकान दे अदा सूरत लेसो प्रोडक्ट हासिल होली और तीसरे सरा चिकुम अमुंग सरा उड़ की सपन जिकुम गले वकना इतबा बिल्कुल नाम मिले हुई सबो तब तरोशी सही दुकान था और यू जहान मन ने कहा उर्दून को देने लगा पहर जाए कि मीठा खेलो की सबराबाद की नरेपनोज डगरनरी और दूसरा सरा पा मीठा खेलो के और सरा पोटीरी की बदलते मिले हुई जी हर चीज के तासवाल तक वर्तल रिश्ता सवाल तक तरला सा कवली से प्रोडक्ट और मजीद मालूम तो बात सर बेटे कवली से 0336-9900-764 बंदे एचा मैसेज चिकाल ने भी शामिल छे नो बहाना मजरत सरा इंशा सबा तब शामिल की सबा तब बेशो तरजमा सबा पर बता सर कोई मत इज्जत चिचर तो वेरता खुशाल आबाद हो से दलो एला पो अमान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ουγγελιέ για πάντα σαπάρ, είτε τόσα εγώ χωστήτη.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, ο χωστήτη.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζει μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γκυλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरों वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویشی
1: تار کنا داو تو دفا بانی گل شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پر شوی مارکی شه دیشما مین دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سار او درتا ملویشی

हम और सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो 88.4 कर आपके

0: जी सो खबर है के दे किम जी नाम
1: हम जे खबर है रिस्किया तंगेना
0: हम जे द अख्तर ये
1: आओ कना
0: सरंगे ये शय जुड़िए
1: मुबारकता
0: मुबारकता चेरर ना वर्की है तलाई चेरे वे तलाई चेरे वे वर्क चेरे वे पकूर से खोना वे चेरे लार बार तलाई वे वर्क शवाई वे बेखी दे पाता ना लगे दाम
1: इस्लामाबाद
0: तलाई तलाई पट पट चेरे जे वदारा चेरे उदे जपदा इस्लामाबाद इना शे वन सो ने बे उदे दा कुजी ना कुजे दा कुजी ना दे सदी दाव दर ना उबो सो जे ता पट पट रे रे का वर्क शवे मोबाइल से दे शोर दा देता भी आयो के त्रोरता देता हद वालो सीसा लो मिचे वो तुता माड़ा इधर का वाला रटा उधर पे रहता गे त्रोर दे हर वक्त सुन ली रखा चाहिए या अल्लाह द खुरैया में दाई चेदा चेदा कला द्री में दा को रटता हूँ नहीं दाई ने माड़े हाँ बस नीम टिका लाए हाँ से दरेटे माँ खुरे समय न जुड़ी थी अच्छा चलो साई इस वाला खुदा से वरना वर्केश और माँ कला कला टेलीफोन अरका साई दो हाँ खो जर का ना खान दिया हुआ का शाही खबर है
1: वालेकुम
0: सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वो क्या सालू वो क्या वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम मीना वाह वाह वाह वाह वालेकुम सलाम मीना खुशुल दे बड़ा बुद्धे बड़ा यो जहान हाय हाय हाय हाय हाय हमजा गल दे हर युद्ध का इरफान गल दे हर युद्ध का यमुना हुई यार शवि विनो हमजा गल ता हां दे मुदे तरफ ना ढेर ढेर सलाम मीना ने के हिले तेरा माता खुशुल दा भी अबू दा भी या दाई सरंगे दाई ओ माशाल्लाह माशाल्लाह सदके जावा ढेर जबरदस्त और ढेर खुशरंगे उदा करेंगे कवड़ी के इरफान गल बाले बाले बाले बाले बाले हाथ दे हाथ दे खुशलियात पे लांडे दे ढेरा ढेरा मनाना दे ठोले और दिन के दास सब यही थे।

0: जनाब यूजर लिबिया प्रोग्राम तरफ तरो शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम तुसी पल मेजबान आर जे शाहिद खान सर दमख स्पिन वो दमख ना दुने दुगिना डबिना तरसरी हारा दिमख तुर बुला दिमख गुंजा पमख वाड़े गाठे दुने दजवन के दुने आम दुने द गरमई दुने याद चिकी मधो मख खरब शवाद नुरदास तरसरी वगैरह दी पे नो बिल्कुल उन्हें परेशान केजे नो खपा केजे पे इस्तेमाल के खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम और यू फेस वाश द खुजिफा कंपनी विटामिन सी फेस वाश उगर सराह उख ले चिदश पेटम क्रीम वो लगे वो सब ये पदा फेस वाश उगिंजे चिद तू बिल्कुल बपिंजश पेश ब्रिजिश दिमाग दा मसले पर खत्म वाले ब्रीद वो की उदा रंगे दे तो मख दे ओवरे वंदे स्पिन जोश अबला खबर दाच कचेरे दे सार दे विष्टुन मसला लरे दे सार ना दे विष्टुन वो कीजे पसार न तम कीजे दे सार विष्टुन लो यवल गाना वल विष दवल गुड़े दे सार दे विष्टुन ना खुरश पखा खत्म कवल गुड़े दिसार वेस्तुन दे विजदशी लुईशी गानशी क्षदिशी दिसार ना वखियेशी ना पसार बंद तामशी नुखुजिफा कंपनी शिफा तेल बंद दखपल सार वेस्तुन गुड़ावे इंशाल्लाह मसलाओ मुहाल शी वेरसरा कचेरे चिकी मधु दे तुसे मसला दे दर्दीवी या मलोज से अड्डी की मला खुशी या मुम अड्डी की दर्दी जी पा अड्डी की मु दर्दी नड्डे के दे दर्दे न परेशानी खपाए दे दर्द गुलाई हो रहे खुजिफा कंपनी शिफा तेल दा दे तुसे दर्दी न लड़ कवि पदा बुंद पल अड्डी की लोज से मला उड़ावे इंशाल्लाह दर्दी नो मुर सरा खातम मजीद मालूम कंपनी हेल्पलाइन नंबर बुंदे उपस्ताई सिफर 331-397-36-36 बुंदे और लाइव कॉल सिलसिला है जरीदू लाइव कॉल हर तक वाले से लाइव कॉल नंबर दें 0330-0344-717 कलर सरा खबर की सुख तिर सर अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर के दिखिम सी ना रानी रानी आवाज दे शाखी जी विलेम जखो डेर शया लश्की वरता वखे से जाचे दा आवाज दे शाखी जी ना रो सरा आवाज दे क्लियर शे वो साई शरानी दा वो यही सेर वोड़ी दी सदर वोड़ी दी रानी ओ कानूर सदर भी रोड़ी खुदा रा सड़ाई पर दरवे खूबी है जे माड़े में रोड़ी है दो हाँ ऐशा बस ऐशा बस वृषा दर वोड़ी है
1: मैंने
0: वालेकुम सलाम शहजादा ही तैयार का हाँ हाँ
1: हाँ हर क्या मजे यार पसंद के जमा किस्मत
0: वालेकुम सलाम खाली माँ सुल्तान सदो आप यही जी शहजादी में जो पता को जीना होने वाला है कना बेचे रठा गुस्सा में बेता की पता नस्ता सौ आ जा दुकान दाई ने पमख ये गेंटी पे रोक लगा
1: ना
0: पर सारा शाखे जो ना उस खा मखा जो पमान से दास से चखाली उतामो शाक का ना बारह मोबाइल से दिया उस गार्ड वर्षा से डेरा डेरा मनाना दे काल कवाले हो ख्याल का दास ने भी चाचार बिना जोड़ की देना

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννιέζει από τα σαπάρ και δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μούταχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη. Οστούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की ओ दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলসে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেশি।

बिल्कुल कॉल दोबारा हो बिल्कुल डाल के बोले पीडीसीएल नंबर और देन लो मैसेजेस पर तो बिल्कुल मैसेज खोले छे 4 8 5 8 3 1 बिल्कुल मैसेज खोले छे मैसेज रिकॉर्ड इस सदासी चखबल मोबाइल के लोड छे राइट या क्रिएट ऑप्शन द चरते के मैसेज लिख गए अगर तो लोड छले के बोली के गड़ खरोश छे आर इके आर किसी के हम बोली के बिया बवेर के स्पेस स्पेस से बात पर लो मखले इलाके नो बिया वेसेंट की 4 8 5 8 3 1 यानी 85 83 बांधी नो बिल्कुल कला तो मैसेज रोशि प्रोग्राम की वो बिल्कुल मैसेज तो रोड से मिली जी अच्छा जी दिन लवा स्ट्रीमिंग बाने चाचा रेडियो मतलब चाचा प्रोग्राम टी उन कटाई दाई स्ट्रीमिंग बाने अगे तो हाँ डिजाइन हर कली ये बिल्कुल तो स्ट्रीमिंग बाने हाँ बढ़ाई शे रेडियो अमन 88.4 कर खुदा फेसबुक पेज दाई www.amanradio.com जी के उन्हें दागा स्ट्रीमिंग दाई नौ दे बने बिल्कुल तो से बढ़ाई शे आल देखे बाद रे चैनल दबके रोशी करक टांग बटाग्राम नौ करक बने बकली को के नौ बिल्कुल रास्ता नहीं सरा तो सो बिल्कुल अवरदाय से बगैर द फ्रीक्वेंसी

0: सही बिल्कुल सही सही
1: सही
0: खबर है बिल्कुल डेरा मनना शेपुर ग्राम से कॉल को यो जहान मनना वालेकुम असलाम डेरा मनना देखाल कवले ठोलो तसलाम देवर से दो यो जहान मनना आओ देने लवा बिल्कुल सनम वानी हचिकम देपो आ वानी सान के बिल्कुल शोभोर भी

अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज करे थे रोशी खान, वेज फॉर मलिका। हम दोस्त बनकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बिछाकर बुलाते नहीं, और हम दोस्ती के लिए जान भी दे सकते हैं, और लोगों को लगता है हम दोस्ती निभाते नहीं। खजी देर मनना रोशिहान मैसेज के बोले यो जहान मनना प्रोग्राम से मैसेज भी कर डेरा डेरा मनना। और दिन अलावा बिचे सलाम भाई, कैसे हो? मैं सलमा हूँ करक से। एम एस जी भाई तहम सलाम, सारे लिसनर को सलाम। एम एस जी भाई को बुलाओ शो में, प्रोग्राम में। अच्छा जी, एम एस जी खुबा जो हुए कहना चे ओस खुबे नीम खूब पूरा खड़ा खुबी करना। डेरा मनना सलमा मैसेज के बोले लो ये खास प्रोग्राम से मैसेज होगा डेरा डेरा मनना।

थैंक यू सलमा मेसेज के बोले। नेक्स्ट तारीख अरीना व्यई तारीख उदासी बीजेम प्ले दाई लक्का। अच्छा अच्छा सलाम हाँ दीर्घ वालेकुम असलम वेलकम टू ऑल स्वीट फ्रेंड मै ग्रेट मलिका डेरा मनाना थैंक यू सो मच योजहान मनाना। नेक्स्ट मैसेज वैसे जिंदगी तो जीना है मन्नत खच्चे को वेलकम तारिक सर हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन शो वेरी नाइस। You will be so fine, very nice show. This show is my best. Salam to our listener. Okay, all the best. Dera manana manat khachak. Yaha message kare di manat khachak. Vaji salam me Vidka, Sara, Aisha, Aiza, Roshi, Zoha, Sonia, Miss Roshni, Zalal, Grid Malika, aur Ilma, Apagul, Chuti Hina, Chuti Mehvish. डेरा मनाना थैंक यू मना थटक टोल सलाम देवर से तुम शाफेसल बनुना मैसेज कर दिया है शाफेसल पाते दिन लगी भी ही शाफेसल फ्रॉम बनगुल सरंग ये डेरा मस्त गार्मा शो दो स्पेशल सलाम सलामुना देर कहो वालेकुम असलम बिल्कुल सलामीना देखे बोल शुरू डेरा मनाना शाफेसल से बनुना दे मैसेज वक्त हो पाते दिन लगे था भी ही हम डेरा मनाना मेहर मैसेज कर जाए मेहर सलाम तारिक भाई कैसे हूँ जबरदस्त प्रोग्राम स्पेशल सलाम टू मनत खटक। डेरा मनाना मेहर मैसेज के बोले थैंक यू वैसे वेलकम टू द तारिकान मिस डी एंड ऑल लिसनर शो टॉपिक वेरी नाइस फ्रॉम सलाहुद्दीन बन्नु सुरानी खजी डेरा मनाना थैंक यू सलाउद्दीन बनोना दे मैसेज बका डेरा डेरा मनाना थैंक यू। नेक्स्ट विषय सलाम अलैकुम तारिक भाई सरंग ये शो दे समा मजक वी मिस जी भाई सरंग दाई मिस जी बिल्कुल ठीक ठाक था मिस जी भाई शो था रुवला मैं चुटी अक्सा फ्रॉम करक एमएसडी खुदा से चेक यू बजन जी नीम खूब पर कर डेरा मनाना थैंक यू अक्सा से करक ना दे मैसेज बका यो जहान बनाना और छे मतलब विश वही खाना बिया होवे शो तो बिल्कुल रोगल है भाई ब्याह हम डेरा मरना प्रोग्राम से मैसेज को योजहान बने ना। अच्छा ये रोशिहान ब्याह मैसेज कड़े देवी तारिक भाई अलग को बांध छम दा बीजीएम वलग बम खजी दा हमें बिल्कुल प्ले कड़े हां दे दा सब फ्रेंड को दिल वाला सलाम अच्छा अपनी बात भी कर वरना इस बार हमने आपको छोड़ना नहीं है ओके मुझे नींद आ रही है अच्छा सही मेरा मन है ना बस बाहर की तरफ यही सही हूँ जी। नेक्स्ट मैसेज डियर आईना वेलकम एंड तफा फॉर आईना एंड गुलशन खैसी कली की अधिकी पतुर स्तर को बांधे कली बुरा नवीना ग्रेट मलिक मैसेज करेगा डेरा मनाना ग्रेट मलिका तो प्रोग्राम से मैसेज वे कहो लो या खादी डेरा मनाना मनत खच एक मैसेज करे तारक सर टॉपिक के बारे में ये कहूंगी के ऐसे वाकया तो मेरे साथ नहीं हुए हैं लेकिन इंशाल्लाह अच्छा जी माशाल्लाह जबरदस्त खजी सही था डेरम सही था यो जहान बना ना दिन लव सॉन्ग फरमाइश देखे देगा ना खा जी तो कोशिश करो और जन इदा से सॉन्ग भी गाना चागा मतलब ठीक नहीं भी नौ दे दजना आगा नशिब लेके बोला डेरा मनना
தேங்க்யூ மன்னர் ஹர்ஷக். நெக்ஸ்ட்

अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज कड़ा है मुस्कान खटक डेरे मनना शे प्रोग्राम से दे मैसेज बगो डेरा डेरा मनना वैसे फॉर रोशी आयशा खटक सोनिया हान।

यही कहना चाहिए, समंदर जैसा दिल मेरे काबू में है, एक आंसू का कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। ग्रेट मलिक का मैसेज कड़ा है, डेरा मने ना ग्रेट मलिक का योजान बने ना। और देने अलावा नेक्स्ट विच इस्लाम तारिक भाई, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है तारिक भाई, हमारे लोगों को अच्छा जी सही यही कहना चाहिए तारिक भाई, हमारे लोगों को फिसवाश के नाम नहीं आती है, तो फिसवाश को चेहरे धोने की शैम्पू कहते हैं। अच्छा एमएसजी भाई को, राज भाई को, हलीमा को, रोशनी खान को सलाम, मैं फातिमा नदान फ्रॉम शिमाली वजीरिस्तान। हाँ जी डेरा मनना फातिमा नदान शिमाली वजीरिस्तान ने मैसेज हो तो डेरा डेरा मनना। थैंक यू सो मच मैसेज को ले। अच्छा जी दिन लबा इंशाल्लाह फेसबुक बने वो हाँ सुमर हो प्रोग्रामी नदी दबा इंशाल्लाह डेर जर लाइव कीजिए वो बीएमएस मतलब चुकम ऑफिशियल फेसबुक पेज दे रेडियो अमन 88.4 करक अगे मैंने बिल्कुल प्रोग्रामी ने वृदाय से मेंशनल डिजर्व आ प्रोग्रामी ना फेसबुक बने हां लाइव ही। अच्छा जी दिन लवा फातिमा नदान शिमाली वर्तन ना आगा मैसेज ये दोबारा रीसेंट करे दे डेरे बने ना चे प्रोग्राम से दे मैसेज बको यो जहान मन्ना इट्स मी सदवफा फ्रॉम करक Hi, Gratitude Brothers, how are you? I like your show. Special salam to Zimal Hatak, Roshan. Okay, good life. Dera Manana, thank you. Sadhafafa, the Karakna message kawale, Dera, Dera Banana, Che program shade, message book, Yo Jahan Manana. Which for Hafsa, for Hafsa Hatak and Ilma Hatak, the Sai Arime Khwaha Neshwa Biva Faide Pama Lobekri Lobekri Dina. Grid Malika message Kurde, Dera Manana Grid Malika program she message Kurde.

अच्छा जी, देने लगा नेक्स्ट मैसेज करें। सुनिए हाँ, मैसेज कर दे। पजान में बिया तोर सदर राहौर को, पजान में बिया तोर सदर राहौर को दे जुदाई तबे दे बिया नहीं वाले यमान। सलाम सर, कैसे हो? मैं सुनिहान, शी इज सो अमेजिंग, डेरा मनाना, थैंक यू सो मच। सुनिहान मैसेज के वाले डेरा डेरा मनाना, अच्छे प्रोग्राम से मैसेज होगा यो जहान मनाना, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम हयात ऑफ मकड़वाल, गुड प्रोग्राम। अच्छा, मकड़वाल ने मैसेज करे, डेरा मनाना ओ दारा तो एक ना के आलते के प्रोग्राम सफाओ क्लियर रजी, आओ कना दाहन तवेले जी सही दा।

नेक्स्ट मेसेज कडे दे खजी देने लवा अच्छा बल कम देना मैसेज कर दे अच्छा जी वीएच में रोशी खान अच्छा दाम मैसेज वालों शामिल को डेडिकेटेड फॉर लर्ली जीवन लम्हे सुहाने साथ हो ना हो कल में आज जैसे बात हो ना हो आपकी दोस्ती हमेशा इस दिल में रहेगी चाहे तमाम उम्र मुलाकात हो ना हो मेरा मनना थैंक यू सो मच लाडली जीमल मैसेज सॉरी रोशिहान मैसेज कवले वैसे दादा लाडली जीमल था डाला ही भी

अच्छा जी बिल्कुल, अक्सर मैसेज करे था यही कहना चाहिए तारिक भाई मुंग ओदता तली वो छे कला मुंग पर उठाई केनस्तो नोईवे खसे मां गुलशन बाजी ता ओवेल छे तासु ता हो मुंग नदी वेली नो जो रुटाई ना चगश वाला

अच्छा जी, सही मुस्कान खटक मैसेज करे खजी सही दा डेरा मने ना, थैंक यू मैसेज के बोले यो जहान मने ना। थैंक यू डेरा मने ना जी प्रोग्राम से मैसेज बक मुस्कान खटक मैसेज करे आवे छे। वस्सलाम मारी अरमान शाह नाइस बरोम वशो सही विच मतलब यखनीश ता ग्रहण मन के मैसेज करे दे डेरा मन ना ग्रहण मलिका राम से मैसेज बको यो जहान मन ना वेलकम मन थे एंड सनम वानी एंड द छोटी अक्षा को सलाम एक ग्रहण मलिका थैंक यू ग्रहण मलिका आवे छी सलाम तारिक भाई कैसे हो मैं एक वजीर तारिक भाई स्पेशल सलाम रोशी खान ग्रिड मलिका छुट्टी अक्षा बिल्कुल बस सलूम दे बेटा वरस है सही दो डेरा मने ना थैंक यू एक वजीर मैसेज के बोले दिन नवा रुशियान भी मैसेज कर दे वेलकम फातिमा नदान छुट्टी अक्षा गोलशन खटक मिनसहानी और दिन लो मेहर थैंक्स मलिका तारिक भाई जब ज्यादा नींद इंसान को

ग्रैंड मलिक के मैसेज कढ़ाई अच्छा सही देखिए इकरम वजीर को वेलकम एंड सलाम इकरम मलिका अजडी रमनना थैंक यू सो मच यो जहान मनना छे प्रोग्राम से दे मैसेज वगो डेरा डेरा मनना

हाँ जी बिल्कुल द ठोलो डेरा मनाना चाबुरगाम से मैसेज वको चाबुरगाम से कॉलो को द ठोलो डेरा डेरा मनाना कभी इंशाल्लाह सबो तमे घर में टाइम 12 1 बजे पर यूजल व्यंदर सरा कीजी मुलाकात तरह पर दुआ गानो की आसत है।